0: This is Your Sunrise, now nationwide on DAB.
1: मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

जुमना माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: Good morning, it's 10:23. Aap sun rahe Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. Now, I have a very important message. Kya aap jante hain ki childhood vaccinations bachchon ko best protection dete hain? England mein har saal 5,000 से भी ज्यादा बच्चों की मौत होती है. बचपन के इन्फेक्शंस, सीरियस बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कभी कभी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी की वजह बन सकते हैं. बचपन के इन्फेक्शन जैसे मीजल्स या वूपिंग कॉफ समाज में बहुत आसानी से फैलते हैं. अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है. याद रखिए, NHS पर दिए गए सभी चाइल्डहुड वैक्सीन्स दुनिया में मिलियंस ऑफ बच्चों ने लगवाए हैं जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड एक्सेलेंट है. प्लीज रिमेम्बर दिस, अपने बच्चे को बेस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए उनके टीके, उनके वैक्सीनेशंस टाइम पर लगवाना बहुत जरूरी है. अगर आपके बच्चे ने कोई वैक्सीनेशन मिस किया है, आज ही अपने GP को कैच अप के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए. क्या आपके बच्चे के वैक्सीन अप टू डेट हैं? उनके रेड बुक को चेक कीजिए और अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क कीजिए. फॉर इन्फॉर्मेशन NHS.UK/childhoodvaccinations पर जाइए.
2: Listener's Choice brought to you by Utsav Plus.
3: डर के साथ छुपन छुपाई खेलना बंद करो, हार जाओगी. डर को आंखें दिखाओ, वो खुद रास्ता दिखाएगा.
1: A story of love, healing and second chances. Watch O Hamnawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM only on Utsav Plus. Massive thanks to those who took a moment to vote. Purnima in Wisbeach, you're driving to London, you're expecting the grandchildren on Sunday. You're looking absolutely gorgeous in that shade of green. Love it. Would that be aquamarine? I think it might be. Bhanu is in the car right now with your grandson Pranveer. I just said hello. 07925-700-272 is the number to WhatsApp me on. Aksar 2. Arijit Singh. Aaj zid kar raha hai dil, in case you didn't hear it the first time. Aaj zid kar raha hai dil. Jahan bhi aap sun rahe, jo bhi is vakt kar rahe, hope you're having a fabulous Friday. Good morning.

टेकन फ्रॉम द फिल्म नाम शबाना। हवाओं की तरह छूके मुझे गुजर रोजाना रोजाना, तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना। कितना खूबसूरत है ये गाना श्रेया की आवाज में। दिस सॉन्ग टॉक्स अबाउट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। He loves her, she loves him, but she's never told him that. And whilst the song is on, you can see her character grappling with conflicting emotions. Usse bataun ya na bataun, abhi bataun, baad mein bataun. By the time the song ends, it's too late. It's a beautiful moment in the film. Aapne dekhi kya naam shabana? Bataiyega zarur. 07925-702-72 is the studio WhatsApp number. My name is Shabnam Sahi. This is the UK's biggest Asian mix, Sunrise Radio. Now,

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

आता है न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे मुंह